ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जामृते व्याप्त हुए अचेन गुलोभुलोक भुवन मोहिनी सर्वविराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमा देवा पृथ्वी और सृष्टिर मध्य परिव्याप्त हुए अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे कल्याणे सर्वदंग।

यैतत् कापेस्तुति सद्य परापरोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वन्सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकषादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगलम।

नमस्ते अंगसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचंद्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभृते।

पापे भियो अन सुतानिव असुरासरिक वथा पंक यच्चितस्ते करज्वला शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके वाग्नथा वयम् भोगानशेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणा त्वामश्रिता ध्याश्रयथाग प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदलंतयाद्य धर्मदिशा देवी महासुराणाम् रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृथाम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्मदन्या ममत्तगत्ते अतिमहान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युवलादि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मीका धारसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव सिद्ध्य पापानि सर्वजगदाञ्च शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गात् प्रणता

ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जाम रूपे व्यक्त हुए आछेन गुलोक भुवन मोहिनी सर्व विराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमा देवा पृथ्वी और सृष्टिर मध्य परिव्याप्त हुए अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे कल्याणे सर्वदंग।

लेन भावि कल्पेर सृष्टि विधाता ब्रह्मा इंद्र विष्णुर कर्णमल जात मधुकै जवसुरोद्दाय ब्रह्मार कर्म अस्तित्व विनाशे उद्दत हते पद्दोजनि ब्रह्मा योग निद्राय मग्न

ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जामृते व्याप्त हुए अचेन गुलोभुलोक भुवन मोहिनी सर्व विराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमा देवा पृथ्वी और सृष्टि मध्य परिव्याप्त हुए अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे कल्याणे सर्वमंगला।

सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपास्त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मयी महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि गोहरात्रिश्च।

ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जाम रूपे व्यक्त हुए आछेन गुलोक भुवन मोहिनी सर्व विराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमा देवा पृथ्वी और सृष्टिर मध्य परिव्याप्त हुए अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे कल्याणे सर्वदंग।

नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरीके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुट वृते महा

असुराश्रिक बसापंक जच्चितस्ते करज्वल शुभाय खड़गो भवतु चैणिके वांगनथा वयम् भोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाज्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृथाम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च तात्मदन्या ममत्तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दष्टिवलादि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव यद्य पापानि सर्वजगदाञ्च शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गात् प्रणतालाङ्

सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सगतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्र विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि गोहरात्रिश्च।

ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जामृते व्याप्त हुए अचेन गुलोक भूलोक भुवन मोहिनी सर्वविराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमा देवा पृथ्वी और सृष्टि मध्य परिव्याप्त हुए अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे कल्याणे सर्वमंगला।

नमस्ते अंगसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरीके देवी नारायणी नमस्ते त्रिशूलचंद्राही धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमस्ते शंकर

ब्रह्म चैतन्य स्वरूपा सर्वोत्तम महिमा महादेवी अंतर्जामृते व्याप्त हुए अचेन गुलोभुलोक भुवन मोहिनी सर्वविराजमाना जगदीश्वरी आपन महिमा देवा पृथ्वी और सृष्टि मध्य परिव्याप्त हुए अवस्थान करें परम चैतन्य रूपा मानवे कल्याणे सर्वमंगला।

यैतत् कापेस्तुति सद्य परापरोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वन्सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकषादि रूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ

नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंसयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरीके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूल चंद्राही धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूर कुक्कुट वृते।

असुरासरिक बसापंक जच्चितस्ते करज्वल शुभाय खड़गो भवतु चैणिके वाग्नथा वयम् भोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाज्य धर्मदिशा देवी महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकोद्दीपे स्वाद्येषु वाक्येषु च कात्वदन्या मम तगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्रोग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दष्टिवलादि यत्र धावानलो यत्र तगाब्धिबद्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये तै भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीतिर्नित्यम् यथा असुरवधादधुनैव सिद्ध्य पापानि सर्वजगताञ्च शमनयाशु उत्पातपाकजनितांश महोपसर्गात्